0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: जय शिव शंभू। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कैलाश के निवासी उमापति त्रिनेत्रधारी, जिनके शीश पर चंदा और जटाओं में माँ गंगा शोभायमान हो रही हैं, हम उन अजर अमर अविनाशी जो सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर भी हैं, उन शिव भोलेनाथ की महिमा का बखान करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को समुद्र मंथन के समय कालकूट विष को पीकर किस प्रकार बचाया। तो आइए श्रवण करते हैं कथा में, किंतु उससे पहले मेरे साथ श्रद्धा भाव से बोलिए जय हो भोलेनाथ।

विष का पान कर धूनी रमा कर बैठे थे, नीलकंठ के नाम से विख्यात हुआ। प्रभु आपकी महिमा परम्पार है, प्रभु आप तो बहुत ही दयालु तथा भोले हैं। तभी

संस्थान भारत वर्ष में ही नहीं अपितु समस्त संसार में जाना जाता है। यहाँ भगवान नीलकंठ शिवलिंग रूप में विराजमान है। यहाँ पर भक्त प्रभु को नारियल फल फूल शहद तथा शीतल निर्मल जल शिवलिंग पर चढ़ाकर नीलकंठ भगवान को प्रसन्न कर अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं। यहाँ कई पावन पूज्य स्थल भी हैं,

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: तो आपकी तहसील कौन सी जगह?
1: डेराबसी जी,
0: और डिस्ट्रिक्ट आपकी?
1: मोहाली है जी। डेराबसी पड़जा लगभग 35 किलोमीटर और मोहाली 55 किलोमीटर।
0: तो आपके वास्ता पंजाब सरकार ने क्या क्या सुविधा दे रखी है, थोड़ा आप उसके बारे में भी हमारे श्रोता नु बतावा।
1: पंजाब सरकार ने तो फिलहाल तो कोई ट्रांसपोर्ट की तो कोई सुविधा नहीं है जी, बहुत ही दिक्कत है। पहली बात तो हमारे बच्चे इधर पढ़ने वास्ते जंदे नहीं है तकरीबन, क्योंकि स्कूल जा जो वो भी 30 किलोमीटर से पहला नहीं पढ़ रहा कोई भी, और जो मान ले सरकारी काम है उसमें मजबूरी में जाना ही पड़ा। कोई अपने घर आते 2000 रुपये खर्च कर जाओ, 2500 खर्चो, जो मर्जी करो, और कोई पंजाब सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं। सुविधा जो बुढ़ापा पेंशन उनमें भी मारी गलो एक किस्म से भेदभाव हो रहा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2700 रुपये होगी, यहाँ जी 1500 रुपये, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। मान ले जो भी विधवा वगैरह सारी पेंशन में ही फर्क है, और जो अपना एग्रीकल्चर का मान लो सब्सिडी वगैरह देती है सरकार उसमें भी फर्क है। पंजाब में तो नाम मात्र ही है सब्सिडी जिम्मेदार के लिए सरकार, पंजाब में हरियाणा में बहुत फर्क है अभी।
0: तो मतलब आप लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी गांव पंजाब में गया। तो जिस तरह यहाँ के बच्चे या गांव के बच्चे जिस तरह स्कूल में तो आसपास चलिए यही चले जा, तो कॉलेज में पढ़ने वास्ते उन्होंने अंबाला जाना पड़ा या कहीं डेरा बसी जाना पड़ा, तो कॉलेज में जाने वास्ते उनके पास कितनी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की बस सर्विस कितनी, ऑटो सर्विस कितनी है कॉलेज में जाने वास्ते?
1: गांव से ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं, एक सवेरे एक टाइम बस आती है हरियाणा रोडवेज की, उसमें ही कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ जो रह जाते हैं वे अपने व्हीकल से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, और कोई साधन नहीं है। पंजाब सरकार का तो एक कोई भी नहीं, मतलब एक व्हीकल भी नहीं है यहाँ भी यहाँ कोई आता हो, और पंजाब में ना ही बच्चे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कॉलेज 35 किलोमीटर है। बच्चा नहीं चाहता अभी, एक कॉलेज तो पढ़ रहा है 8 किलोमीटर, एक पढ़ रहा 35 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर क्यों जाएगा? तो तकरीबन 95% बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं अम्बाला कैंट में अपने, और हरियाणा सरकार को तो हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारा इन सेदारी तो हमारी पंजाब में है। हरियाणा को तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अभी कोई ट्रांसपोर्ट मतलब 2 बजे या 1 बजे वापिस गाँव के लिए भी लगा दे, जैसे सवेरे 1 है तो उसमें हरियाणा के भी कई गाँव पड़ते हैं, ये बात नहीं है। पहले हम जाके भी आए 1-2 जगह, आश्वासन दिया है, चलो भाई मतलब आम बंदा आवाज ही उठा सकता है, सरकार के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब भी हमारी तो एक रिक्वेस्ट ही है सरकार से, ज़्यादातर हरियाणा सरकार से ही करते हैं हम, क्योंकि यहीं हमारा सारा लेन देन है और सारा कुछ यहीं से है। अभी हमारे बच्चों के लिए 2-3 टाइम और बस लगा दे तो थोड़ी सी इनको सुविधा हो जाएगी।
0: तो आपने जिस तरह बताया अभी मानू बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आप इस बारे में सरकार से क्या निवेदन करना चाहा, अभी सरकार हमारी किस प्रकार से सहायता कर सका?
1: देखो हम तो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, यहाँ से बॉर्डर पे हमारा गांव है, और हम तो अपनी पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट ही करते हैं और हरियाणा से भी और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने नहीं कोई अपना ट्रांसपोर्ट का यहाँ से कोई सिस्टम कर क्या कभी कोई जिससे बच्चे स्कूल जा सका थोड़ा सा, मतलब जब बच्चे पढ़ाएंगे यदि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा पंजाब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा एरिया कहाँ तक है, और उनको उनका फर्ज भी है और हमारी मांग भी है अभी ये कम से कम जहाँ तक उसका एरिया पड़ता है वहाँ तक बस या कोई मिनी बस तो ऐसा कुछ हो जाए जहाँ से जैस का बंदा आसानी से कॉलेज अपना जो भी कचहरी का काम है, और हरियाणा से भी यही प्रार्थना करते हैं हरियाणा सरकार से कि कोई मतलब 2-3 टाइम बस और लगा दे, और इस जो रूट हमारा गांव जिस रूट पे पड़ता है इस पे आगे हरियाणा के गांव भी काफ़ी हैं, उन बच्चों को भी लाभ होगा, हरियाणा को भी, हमारा तो इसमें फ़ायदा है ही है, हरियाणा का भी फायदा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है हमारी हमारे पूरे एरिए की केंद्र सरकार से ये है कि जो ये गांव है जिनके 3 पासे हरियाणा लगता है, हमारी बोली भी हरियाणा की है, सारा लेन देन जो भी हमारा बैंक का ला लो या अपनी फसल का ला लो सारा कुछ हरियाणा में है, हम सिर्फ पंजाब में सरकारी काम के लिए जाते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे 5-10 गाँव जो से हरियाणा के पास पड़ रहे हैं, पास क्या है बिल्कुल अंदर बढ़ गए हरियाणा के, तो 6 गांव तो इनको अगर हरियाणा में ले लिया जाए तो हमारा जीवन और मतलब सुखमय हो जाएगा। यही सारे गांव की भी मतलब पूरे एरिया की डिमांड है हमारी केंद्र से सरकार से, अभी हमें हरियाणा के साथ लिया जाए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह जानकारी दी, सरकार आपकी आवाज सुनागी और आपकी मदद करागी। आज हम बात करांगे गांव के जीवन के बारे में, और मार आज का कार्यक्रम आओ गांव चले, तो गांव के बारे में और ज्यादा जानने वास्ते आज हम पहुंचे हैं गांव रजापरमा, जहां हम बात करांगे राम किशन जी ते, और जिनकी उम्र हो रही 70 वर्ष। राम राम ताऊ।
2: राम राम जी।
0: और ताऊ ठीक ठाक?
2: ठीक सही।
0: तो ताऊ मैं आज तेरे यूं पूछना चाहूँ भी, जोन सा आज का गांव का रहन सहन है और जोन से हमारे पहला के टाइम मोए कराते, उनमें कितना फर्क पड़ा?
2: हमारे टाइम में तो बेटा जब हम स्कूल में जाया करते थे, साइकिल भी प्राप्त नहीं होती थी हमारे, हम पैदल जाया करते थे, और यहाँ से गांव सरसेड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, हम वहां पर पैदल जाके स्कूल में पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल था। इसके बाद हम 5वीं से 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक हमने कहाँ पढ़ा है, सरसेड़ी में। सरसेड़ी में 10वीं क्लास जाने के बाद उससे आगे स्कूल नहीं था, फिर हमें अम्बाला कैंट पढ़ना पड़ा।
0: तो ताऊ मतलब तने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी हुई है?
2: मैं 10+2 तक पढ़ा हूँ।
0: ठीक बात आऊ, तो 12वीं के बाद तने फिर कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू करी?
2: ना बेटे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कॉलेज में पढ़ सकता, ये 12वीं भी बहुत मुश्किल से की है, इतनी घर में गुंजाइश नहीं थी। ये गांव बिल्कुल, यहाँ हर एक मकान कच्चे थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, फसलें नदी बर्बाद कर देती थी, यहाँ तो बहुत मुश्किल जीवन व्यतीत किया हमने अपने टाइम में। आज के टाइम में बहुत सहूलियत है, गांव में सड़कें भी बन गई हैं, पक्के मकान भी बन गए हैं, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है।
0: ठीक बात ताऊ, तो ताऊ तन्ने अपने बारे में बता दिया भी गांव के माहौल में कितना फर्क पड़ा, तो इस माहौल के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हम एक और ताऊ से बात करांगे। राम राम ताऊ। तो ताऊ आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी हो रही है?
3: उम्र 74 साल, पूर्णचंद मेरा नाम है।
0: ठीक बात ताऊ, तो ताऊ जिस तरह तेरी उम्र 74 साल हो रही, तो तन्ने बहुत पिछला टाइम भी देखा और जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा यो भी देखा, तो ताऊ मैं तेरे तेन यू ही पूछना चाहूँ भी तन्ने अपनी जिंदगी में कितना फर्क देखा, भी पहला तेरी जिंदगी कैसी थी और आजकल के मारे न्याणे की जिंदगी में कितना फर्क देख रहा, तो तन्नु वह टाइम अच्छा लगा था आ की टाइम बढ़िया लग रहा?
3: टाइम तो वह भी अच्छा था बेटे, यही अच्छा, थोड़ा हर चीज तो मिल जा, पहले तो कोई सामान नहीं इतना मिला था, कोई बहुत दिक्कत थी, मतलब रेते में जाना, रेते में आना, पानी में चलना सारा दिन, मैं नहीं बता और क्या बेटे, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था।
0: ठीक बात आओ, तो रहन सहन के बारे में थोड़ा सा बताओ अगर श्रोता नु भी, तो खाने पीने का किस तरह बदल गया, हमारा पहनावा कितना बदल गया, अरे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आगा
3: बहुत ज्यादा ही बद गई, तो बेटे पहला कहा कपड़ा भी नहीं इतना मिला था, क्या एक कुर्ता तो थी मिल गई, 1-6 महीने वही आदमी पहरे, पैर में जूती नहीं मिला थी, कहीं जहाँ देते तेरे भर के भाई किसी की मांग का जाना ये काम हुआ थे बेटे, यहाँ से पैदल जाना सीधा बेब्याल को, ये हाल थे, कोई सवारी का साधन नहीं था, कोई नई बात है और कुछ नहीं बेटे, जो पढ़ाई लिखाई है बताई है वही है बस।
0: तो पहला यातायात के साधन बहुत कम हुआ थे और बुजुर्ग जोन से मारे पहले बंदे थे उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा था।
3: यहाँ यहाँ बैठे यहाँ तो पानी की टक्कर लगती थी नदी की, ऐसे पानी फैलता था इसके गांव के चारों गिरता, ये सरसेड़ी परसेड़ी ये सब इधर अंटाड़ा सब में पानी घूमता था, फसलें सब नष्ट हो जाती थी, खाने में कोई बहुत बहुत दिक्कत आती
0: थी। राम किशन ताऊ जी आपते पूछना चाहूँ भी, जोन सा आपका गाँव आ रजा पर, इसमें क्या खास बात अभी और गाँव आते अलग?
2: ऐसा जी, गाँव रजापुर जो है बिल्कुल छोटा सा गाँव है, बहुत अच्छे आदमी इसमें, कोई चोरी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, ये शरीफों का गांव है।
0: ठीक बात, तो मतलब थारा गांव शरीफा के गांव के नाम ते बजा?
2: बिल्कुल, रजापुर है ये, यहाँ पर पहले दो आदमी होते थे, एक राजू एक खेलू, राजू ने रजापुर बसाई और खेलू ने खेलन बसाई है, गांव दोनों एक ही हैं।
0: तो इस गांव का यो नाम इस कर का पड़ा था, राजू के नाम से पड़ा था। तो ताऊ मैं तेरे ते और न्यू पूछना चाहूँ, जोन सा यो थारा गोवा रजा पर यो पंजाब मावा और हरियाणा थार ते 7-8 किलोमीटर दूर आ, तो इसके पीछे क्या कारण रहा भी यो पंजाब में लिया गया?
2: ये तो बेटे हमारी सोधी से पहले की बात है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, कागजों में पंजाब में शुरू से है ये गांव, ये तो बुजुर्ग जानते होने, लेकिन हमें हरियाणा में जितना फायदा है पंजाब से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, हरियाणा में हम जाएंगे, पढ़ाई हमारी हरियाणा में, नौकरी हमारी हरियाणा में, ना है यहाँ पर बसें मिलेगी कोई, पैदल जाएंगे और टेम्पो में जाएंगे या कोई साइकिल पे जाएगा या थ्री व्हीलर में जाएगा, थ्री व्हीलर में बैठेगा 1.5 घंटा इंतजार करने पड़ेगी, जब तक उसकी सवारी पूरी नहीं होगी तब तक टेम्पो नहीं चलेगा। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी बस नहीं है, एक नारायणगढ़ से दिल्ली के लिए बस जाती है सुबह के टाइम 7 बजे, वो भी हरियाणा की है, लेकिन पंजाब की यहाँ पर कोई लोकल बस नहीं है, कोई सरकारी बस नहीं है, पंजाब से हमें कोई भी इतना बेनिफिट नहीं है। यहाँ से इस गांव से कम 1000 बच्चा अंबाला कैंट ड्यूटी पे जाता है प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहूलियत नहीं, ना हमारे को कोई नौकरी देता है पंजाब में, ना हमें कोई उनकी सहूलियत है। हरियाणा में ज्यादा हमारे बच्चे हरियाणा में ज्यादा नौकरी कर रहे हैं जबकि पंजाब में नहीं कर रहे।
0: ठीक बात तो, मतलब सारे काम हरियाणा में ही, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो,
2: हमारे काम हरियाणा के अंदर ही मिलेंगे। पंजाब में तो ये नाम मात्र के हम, नाम है कि हम पंजाब में रहते हैं।
0: ठीक बात तो, मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी भी, जोन से हमारी पंचायत हुआ इसके जोन से पहला के फैसले हुए कराते और जोन से इब पंचायत चल रही इसके फैसले, इनमें कितना फर्क पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
2: पहले जो पंचायतें थी हमारी, तकरीबन ज्यादातर किसी की लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, फैसला यहीं हो जाता। ये डॉक्टर धर्म सिंह के टाइम की बात है, उस टाइम यहाँ के सरपंच थे, राजा पर थे। लेकिन आज के टाइम में हरेक आदमी के अंदर आग इतनी बढ़ गई है कि वो हरेक आदमी थाने की तरफ भागता है, तो अब तो थाने में जाना पड़ेगा और थाना पड़ेगा यहाँ से दूर। पहले लारडू थाना था हमारा, अब हंडेसरे में पड़ता है। तो पहले में और अब में तो बहुत फर्क है। पहले 4 आदमी इकट्ठे होके पंचायत के आपस में यहीं पर फैसला कर देते थे, आजकल कोई किसी की मानता नहीं, सीधा थोड़ी सी बात हो जाए किसी से लड़ाई हो जाए सीधा सरपंच को भी नहीं पूछेगा, वो पहले थाने में पहुंचेगा। आज का टाइम ये है।
0: तो तन्नू अपना वही टाइम पसंद आ तो नहीं, वो टाइम ठीक लगा?
2: बेटे हमारा टाइम तो वो भी ठीक था, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से टाइम ये भी ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी सहूलतें अब हो रही है। हम तो बरसात का टाइम आता था कोठे पे गारा लगाने के लिए परेशान हो जाते थे, किसी का कोला गिरता था, कच्ची छतें थी, डंडे डार रखे थे छतों पे, कड़िए के मकान थे, और आज एक भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कच्चा है, हरेक का मकान पक्का मिलेगा, हरेक के घर में फर्श मिलेगा। हाँ उस टाइम में ये था, कोई गरीब आदमी है उसके घर में दूध नहीं है, पड़ोसी से मिल जाता था। अब तो जिसके घर में खुद दूध है वो भी दूध नहीं पी सकता, वो डोलू वाला ले जाता है। तो टाइम तो वो भी अच्छा था, जनरेशन के हिसाब से ये भी अच्छा है।
0: तो ताऊ, तो आज के मारे जोन से युवा अपने बालक है न्याणे, उन्हें क्या कहना चाहगा भी जिस तरह गलत आदतों में भी पढ़ रहे बच्चे और अपना पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान दे दे, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहा तो भी अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और किस मुकाम तक पहुंचना चाहिए?
2: बेटे हमारा टाइम ऐसा था, अगर किसी अपने बुजुर्ग के अलावा किसी और बुजुर्ग ने भी डांट दिया ना हमारे को, तब भी हम बोलते नहीं थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपने बच्चे को हम खुद नहीं डांट सकते। पहले क्या था हमारे टाइम में, अगर पड़ोसी ने भी डांट दिया हम सीधे उनसे डर के भाग जाते थे, अब किसके बच्चे कहना मानते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, तन्ने जानकारी दी और तो आज के युवा नु संदेश दे रहा भी अपने उसी टाइम पर चलना चाहिए जिस तरह हमारे पहला टाइम था, अपना कहना मान्य कराते ताऊ चाचे का बहुत डर होए कराता उस टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे, हम युवा के साथ बात करेंगे कि युवाओं का जीवन कैसा है और वे अपनी जिंदगी किस तरह व्यतीत कर रहे। राम राम जी।
4: राम राम जी। नेहा जी, पहले तो आपको थैंक्स जो आप हमारे गांव में रेडियो के माध्यम से यहां तक आए। और मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं गांव रजापुर पोस्ट ऑफिस केलन डिस्ट्रिक्ट मोहाली तहसील डेराबसी से रहने वाला हूँ।
0: तो प्रवीण जी, जिस तरह आप एक युवा, तो मैं आज आपसे युवाओं के बारे में ही जानना चाहूँ भी जोन से मारे युवा उनका जीवन कैसा है और उन्होंने कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
4: देखो जी नेहा जी, ये तो अलग अलग स्टेप होते हैं, युवाओं के अनुसार उसकी कैटेगरी, उसके परिवार के अनुसार वो डिप्लोप होती है। जैसे एक परिवार में पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो 80% लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर कल्चर पहली बैकग्राउंड खराब है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने में समय लगेगा। और अगर मैं बात करूँ युवाओं की, हमारे गाँव में 80% युवाओं बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, हम पंजाब में एक 10वीं और 12वीं का स्कूल है, उसके बाद सारी एजुकेशन हम हरियाणा से डिप्लोमा करते हैं। और एजुकेशन के बाद अगर बच्चा ग्रोथ करेगा, नौकरी पैसा जो भी लेगा, वो भी 90% हरियाणा में लेंगे, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। हम 80-90% प्राइवेट में करेंगे और वो भी मैक्सिमम हरियाणा में करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, हमारे गांव से जो डेराबसी कॉलेज है, और कोई आसपास पंजाब का कॉलेज नहीं होगा डेराबसी, जो हमारे से 35 किलोमीटर दूर है। अगर यही बात हम हरियाणा से बात करेंगे तो हमारे से 7 किलोमीटर दूर SD कॉलेज है। एक कॉलेज नहीं, 4 कॉलेज है। इवन जो मेरी, जैसे बात करूंगा, छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, माता जी, जो हमारी सिस्टर बुआ जी हैं, जो पढ़ नहीं पाई, वो भी हमारे से 10 किलोमीटर कॉलेज आ रहा, गर्ल कॉलेज, वहाँ स्टडी होप कर लेती वो, अगर हमें सहूलत मिलती।
0: तो मतलब आप यूं कहना चाह रहे भी पढ़ाई लिखाई मानू यातायात की सुविधा नहीं है, आने जाने में दिक्कत हुआ, और इसकी वजह से शिक्षा शायद कहीं ना कहीं कम रहेगी।
4: यस मैम, जो आपने कहा है तो 100% यही कारण है इसके पीछे, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो बच्चे रेडी हैं, पर जो उसको आवाज आएगा, जो साधन 4 घंटे सर्वाइव करेगा, वो कैसे करेगा? ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने का कारण भी मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा पंजाब का उसको पास लेना पड़ेगा, जो 2 सरकार का गेट पास लगेगा, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी होती है, जिसके कारण कोई प्राइवेट भी उसमें बस की सुविधा नहीं दे पाएगा। अगर सिंगल होता तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कम लगेगा और जिसके कारण सुविधा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, लोकल है तो अपने पास किसी गाड़ी या किसी बाइक है, वो अपने साधन से जो मर्जी जाए, वो तो उसके पेरेंट्स के बदौलत बच्चे स्टडी कर रहे हैं।
0: तो आप सरकार से यूं ही कहना चाह भी मानो शिक्षा प्राप्त करने वास्ता साधन भी मिलने चाहिए और हमारे आसपास भी कोई कॉलेज होना चाहिए।
4: राइट मैम, सारे कॉलेज हैं, SD कॉलेज है, GMN कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्यागल कॉलेज है, DAV कॉलेज है, अग्रसेन कॉलेज है, 7 कॉलेज गिनवा दिए मैंने 8 किलोमीटर के अंदर, और पंजाब के अंदर एक कॉलेज है डेराबसी 35 किलोमीटर की दूर, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? अब दोबारा आओ प्राइवेट सेक्टर की बात, अगर मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ से मेरे 6 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ 400 कंपनी है, कोई गैस की, कोई लोहे की, कोई साइंस की, तो मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने पैदल भी जा सकता हूँ अगर घर से कमजोर हूँ, और उसके बाद 2000 की साइकिल लेके भी जा सकता हूँ। बट पंजाब सरकार में मैं नौकरी कहाँ करूँगा? 40 किलोमीटर दूर डेराबसी से इंडस्ट्री एरिया लगता फेस पे, ट्रिब्यून चौक पे, और यहाँ से वो 60 किलोमीटर दूर, मुझे आने जाने का बताओ कैसे करूंगा मैं?
0: तो आपकी सरकार से क्या मांग, आप क्या गुहार लगाना चाह सरकार ने?
4: देखो मैं तो दोनों ऑप्शन बता दिए आवाज के जरिए, आपके रेडियो के जरिए भी। पहला ऑप्शन ये, या मुझे कॉलेज के पास ले जाओ मेरे बच्चों को, ताकि वो स्टडी कर लें, नहीं ले सकते मुझे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं एजुकेशन खुद ले लूं। दोनों सरकार के पास है, और केंद्र सरकार के हाथ जोड़ निवेदन करूंगा मैं कि जो ऑप्शन सही लगे वो मुझे एग्री होना चाहिए। अब थाने कचहरी की बात करूं, जैसे सरपंच साहब ने ओवरऑल कवर कर ही लिया मेरा, अगर मेरी DL या RC कोई भी चीज बनवानी पड़ेगी, मुझे डेराबसी जाना पड़ेगा जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, अगर यही चीज मुझे बनवाने के लिए ये 6 किलोमीटर दूर है, मुझे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और एक दिन की 400 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, मैं आसानी से जा सकता हूँ लंच टाइम में भी, क्योंकि मैं तो जॉब फैक्ट्री में कर रहा हूँ ना, कंपनी में एक छोटी सी जॉब, तो लंच टाइम का पीरियड होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर मैं कचहरी में जा सकता हूँ, बट वहाँ मुझे 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों अफसर सरकार के पास है देखो, और हम यहाँ बैठे हैं और आवाज केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ऑलमोस्ट पहुंच चुकी होगी। अगर मुझे गांव के अंदर एक नाला बनवाना पड़ जाए, मेरी सरपंच सुनवाई ना करे, कोई सुनवाई ना करे, मुझे MLA के पास जाना पड़ेगा ना। MLA कहाँ बैठता है मेरा? चंडीगढ़ डेराबसी। वो हमने आवाज आप तक पहुंचाई थी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छा निकले और हम आगे बढ़ने की बात करें। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है भी, हम आगे जब बढ़ेंगे, जब देश हमारे साथ हमें आगे बढ़ाएगा और हमारी सरकार कोई निष्कर्ष निर्णय लेगी, हरियाणा ले या पंजाब ले, उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं सर्वाइव करेंगे, अगले 70 साल भी आप आ सकते हैं। जब मैं 70 साल कहूंगा तो आप मुझे यही क्वेश्चन करना और मैं यही आंसर दूंगा, सेम जो मेरे बाबा जी ने दिया और जो सरपंच साहब ने दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने जो इतनी जानकारी दी और अपने बारे में बताया, और जो उनसे देश के युवा उनके बारे में भी मैं किस तरह आगे बढ़ सका।
4: देखो देश तो आगे आज भी बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ रहा था, बट हमारा गांव आगे पहले भी नहीं बढ़ रहा तो आज भी नहीं बढ़ रहा। पहले बड़ा होता तो बाबा जी बोलते बड़ा हुआ है, उसके बाद 20-40 साल का गैप सरपंच साहब बोलते, और मैं भी सेम बोल रहा हूँ, और मेरे आने वाले बच्चे भी यही क्वेश्चन करेंगे।
0: प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे से बताया भी मन यो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो इसका हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे भी जो आपकी दिक्कत है वह सरकार सुना और जो भी सरकार उसका फैसला लेवागी तो आपके फैसला और जिस तरह हम यहाँ आपके गोमाए तो मारिया जोन सी आने की यहाँ वजह व सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू नेहा जी, जो आपने कहा देखो सफल तो जब भी होगी जब आवाज उठाएंगे, आपका नाम ही पहले आवाज है, आवाज उठेगी तो वो कुछ ना कुछ ले ही होगी डिसीजन। और ये निष्कर्ष मेरा नहीं है, विलेज राजापुर से मैं हूँ, मेरे पास वाला गाँव खिलन है और उससे पास वाला अंटाला, मालन, जोधगढ़, इवन सारंगपुर, ये सारे के सारे 6-7 गाँव है जो हरियाणा का बिलोंग करते हैं। और ये मेरा मतलब एक मेरी तकलीफ नहीं है, 7 गांवों की सेम यही है, आपकी आवाज उठेगी, आपकी आवाज की सुनवाई होगी तो ये 7 गांव आपका एहसान मंद रहेंगे पूरी लाइफ। हम भी अगली पीढ़ी को ये बोलेंगे भी आवाज से हमारे पास आया और हमारी आवाज केंद्र सरकार को गई और उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी।
5: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सेजल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंजाब के एक गांव रजापुर में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के पंच और सरपंच, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में।
6: नमस्कार जी, मैं गांव रजापुर से और राज सिंह बोल रहे हैं सरपंच से, तहसील डेरावासी, जिला मोहाली।
5: सर क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में अगर हम कृषि की बात करें तो इस समय कौन सी फसलें लग रही हैं और क्या कृषि के लिए तैयारी हो रही है?
6: मेरे गांव में जीरिया लगी हुई है अभी और चरी बाजरा है जो भैंसों के लिए और गन्ना है, बस मुख्य फसलें यही हैं ज़्यादा।
5: और जैसे फसलों के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो पानी की क्या सुविधाएँ हैं आपके गाँव में? से
6: गाँव में किसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने वेल लगा रखे हैं और एक सरकारी बोर है वो भी बिना देख रेख के ही चल रहा है रबरों से, बाकी कोई नहरी पानी नहीं है। जैसे पंजाब एक खुशहाल प्रदेश है, यहाँ से कोई नहरी पानी का कोई कभी देखे ही नहीं, किसी ने कभी नहरी पानी का होता है। और हमारे साथ तो यहाँ से बहुत ही सरकारों ने पहले से वो कह नहीं देते सौतेला व्यवहार कर रखा, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तो उनसे जो मर्जी को हल हो, नहर भी आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं।
5: जैसे अभी बारिश के मौसम में काफ़ी सारे गांव बारिश की वजह से प्रभावित हुए थे, तो उस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आपके गांव को कोई दिक्कत आई?
6: बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, गाँव में पानी भी बढ़ा है और डांगरी नदी ने भी बहुत मतलब जो उपजाऊ जमीन थी उसका बहुत नुकसान कराया है। तकरीबन 40-50 साल बाद इतना पानी देखने को मिल रहा है जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, इससे पहले तो कभी इतना पानी आया नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे इसको बात न हो चाहे आप काट भी दियो, मतलब कोई वो नहीं है, जो सच है तो सच है। इब की बार इस बरसात में जो अपना मेहजनगर का पुल है उसने डुबोने का काम कराया है, जो अपना सरसेड़ी में पानी बढ़िया वो पुल के कारण बढ़िया है। आप मतलब सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए, उसके मैंने उसके नीचे जाके खुद देखा है, उसके 8 पिलर हैं, मतलब 8 दरवाजे ला लो आप, उन 8ों में से 4 बंद है और 4ों में का पानी निकलता है और 4 बंद हैं, तो पानी तो कहीं ना कहीं रास्ता चहेगा। वहाँ पानी पूरा ना निकलने के कारण जो सुसेड़ी में पानी बढ़िया है वो तो सारा वहाँ की नाकाम भी है, वहाँ से निकासी बंद हो ही है, वो सरकार का काम है देखना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये मेरी मतलब आवाज़ ना काटा तो आप बढ़िया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। पूरी हमारी कैंट की अंबाले की इंडस्ट्री डूबी है इसी के कारण, 20-25 गांव जो डांगरी का तकरीबन 3 इंच से पानी इधर से गया, 1 इंच से पानी इधर गया।
5: तो इस वजह से गाँव के कितनी प्रतिशत जमीन और फसलें प्रभावित हुई?
6: मेरे गांव में तकरीबन 30% फसलों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 15% जमीन खराब हुई है जो खेती के लायक रही नहीं है।
5: तो जैसे कि आपने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया, तो इसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला या सरकार की तरफ से कोई सुविधा प्राप्त करवाई गई है?
6: नहीं, अभी तो कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं कराई गई है। पहले भी जो अपनी कणक की फसल में बरसात हुई थी तब भी सरकार ने फार्म वगैरह भरवाए थे, कोई मुआवजा नहीं दिया, और अब फिर सरकार ने फार्म भरवा रखे हैं जिसका नुकसान हुआ है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, आगे देखो सरकार क्या करती है।
5: अब हम बात करते हैं इस गांव से जुड़े स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में। तो पहले हम यहाँ के पंच से पूछना चाहेंगे कि इस गांव में क्या क्या स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं।
7: नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं यहाँ का पंच हूँ जी। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा कोई नहीं है जी। यहाँ सिर्फ यहाँ से पहले भी जिस सरपंच साहब कह चुके हैं, यहाँ से सरकारी अस्पताल डेराबसी पड़ता है जी 40 किलोमीटर, और हमारी तो सारी आबादी यहाँ की गाँव की सिविल हॉस्पिटल पर ही डिपेंड करती है जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, यहाँ सिर्फ हरियाणा पर ही डिपेंड है जी।
5: इस बारे में सरपंच जी आपके क्या विचार
6: है? जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, सारी इसमें सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ तो सरकारें बोलती हैं कि एक देश कैसे हुआ, ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मतलब सेंटर सरकार की स्कीम है, बोल रही है कि कहीं भी इलाज कराओ। और हम पंजाब में हैं, हमारे से नज़दीक पड़ता है हरियाणा का हॉस्पिटल, हम वहाँ जाते हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं चलता वहाँ पे, तो हम कहाँ जाए करके बहुत मुश्किल है। और पंजाब सरकार आई है, एक मतलब दिल्ली का मॉडल लेके आई थी कि यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर से इधर से कोई अब तक खुलिया नहीं है। मतलब लालडू अपना हॉस्पिटल एक छोटा सा यहाँ पे अंटाला में है, अंटाला भी 3-4 किलोमीटर है, वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं अब तक हैं, कोई मरीज मतलब जाएगा तो उसको पूरी दवाई नहीं मिलेगी, फिर उसको हरियाणा में आना पड़ेगा, वो क्यों जाएगा वहाँ से उल्टे पास से।
5: तो आप हमारे रेडियो के माध्यम से दोनों सरकारों को और केंद्र तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं?
6: मैं तो ये संदेश क्या, हमारी तो प्रार्थना है सरकारों से, अभी गरीब मार ना करे, अमीर तो अपना इलाज करा लेगा पैसे दे के कहीं भी करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जिसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो तो अपने घर बैठा बेफिक्र होगा, अभी मेरे पास तो कार्ड है और मेरा इलाज हो जाएगा, और जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कुछ नहीं, वो कहाँ एट ए टाइम उस टाइम मरीज को संभाले या पैसा देखे कहाँ क्या करेगा वो। मतलब मेरी तो यही है प्रार्थना कि जो पंजाब का आयुष्मान कार्ड है वो हरियाणा में भी चले, यूपी में भी चले, दिल्ली में भी चले, जिससे अपना बीमार आदमी अपनी दवा पुट्टी करा सके।
5: आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या कोई सुविधा आप चाहते हैं सरकार के द्वारा आपको दी जाए?
6: अगर जैसे हम पंजाब में हैं, लास्ट गांव है, यहाँ से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए जिससे मतलब फर्स्ट एड मिल जाए बंदे को, थोड़ा फिर मतलब राहत मिले आदमी, फिर अपना कहीं भी इलाज करा ले, ये मतलब छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलना जरूरी है यहाँ पे।
5: जैसे इस वक्त हरियाणा में डेंगू के केस और पंजाब में डेंगू के केस ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आपके इस वक्त आपके गांव में क्या स्थिति है सर?
6: बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब 100-150 मरीज पड़े होगा हॉस्पिटल में, और मैंने एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फोन भी किया है, इस ऐसे ऐसे करके मेरे गाँव में पड़े है मरीज, कोई मतलब स्प्रे करा दे या कोई दवाई का इंतजाम कर दे कुछ भी, मतलब अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, ना कोई पूछ सुध लेने आया कि यहाँ भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वहीं बैठे रिपोर्टें दे देते हैं, सब ठीक है यहाँ पे।
5: आप इस समस्या से इस वक्त कैसे इसका समाधान निकाल रहे हैं खुद ही, और क्या क्या चीज़ें आपने अपनाई हैं?
6: समाधान तो कुछ नहीं है जी, यही अपना हरियाणा के हॉस्पिटलों में पड़े हैं बंदे, अपना इलाज करा रहे हैं, अपने मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना।
5: तो ये थे रजापुर गांव के सरपंच जिनसे हमने बात करी और जाना किसानी के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करते हैं इनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द इन्हें सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी।
8: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, रेडियो वितस्ता 90.0 FM से, और आज हम आधिकारिक रूप से आए हैं गाँव रजापुर में, जो तहसील डेराबसी पंजाब राज्य में पड़ता है। ये गांव अंबाला कैंट जो हरियाणा में पड़ता है, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने आज गांव के अलग अलग लोगों से बात की, जो अलग अलग उम्र के हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, और जो लोगों से हमने बातचीत की उससे हमें एक अलग ही एक तस्वीर सामने आई कि एक गाँव जो किसी राज्य के बॉर्डर पर है और दूसरे राज्य के नजदीक है, उन लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ऑफिशियली कोई काम करना पड़ता है तो उनको 35 किलोमीटर दूर या तो डेराबसी जाना पड़ता है या उनको 60 किलोमीटर दूर मोहाली जाना पड़ता है। जब ये लोग यहाँ पर अस्वस्थ होते हैं तो इनके लिए सबसे नज़दीक हरियाणा में जो अंबाला कैंट के अंदर हॉस्पिटल है वो आता है, उनको वहाँ जाना पड़ता है जो केवल 7 या 8 किलोमीटर दूर है। जहाँ तक हमने देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात हमने की, पंजाब सरकार की ओर से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग अपना ट्रांसपोर्ट यूज करके जो कोई इनको काम करना है, चाहे इनकी बच्चों की पढ़ाई है, चाहे इनका रहन सहन है, चाहे इनके लिए घरों के लिए सामान लाना है या जमींदारी के लिए कोई सामान लाना है, तो ये निर्भर पूरी तरह से हरियाणा राज्य के जिला अंबाला पर है। इन लोगों की बात हमने आज सुनी है, रिकॉर्ड की है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बात पंजाब सरकार तक देंगे, हरियाणा सरकार तक देंगे और केंद्रीय सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक जरिया है जिस जरिए के माध्यम से हम लोगों की बात बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकारों तक पहुंचाते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। जब बुजुर्ग कहते हैं कि आज से 70 साल पहले ये गांव वैसा ही था और एक युवा जो 30 या 35 साल का है वो भी यही कहता है कि आज भी गांव वैसा ही है, और उनका कहना है कि अगर हमारा बच्चे से कल आप पूछोगे 15 साल 20 साल के बाद वो भी यही बात कहेंगे, तो ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सभी सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस गांव के बारे में सोचे, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज हमें इतना सारा समय दिया, आप सभी लोगों का रजापुर गांव से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। हम लेके आए हैं आपके लिए आज के कृषि समाचार।
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: कपास की बिजाई इसी महीने अंत तक पूरी कर लें। दीमक वाले खेत में करें बीज उपचार। खेत में पलेवा के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 3 से 4 बार जुताई अवश्य करें। कपास की बिजाई मई के अंत तक पूरी कर लें। नरमा की उन्नत किस्मों तथा देसी कपास की सिफारिश शुदा किस्में ही बोएं। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज के अनुसार पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 3 से 4 जुताई करें। बिजाई से पहले खेत में अच्छा पलेवा करें। गीले बत्तर में 2 जुताइयां करके सुहाग लगाएं व खेत में पौधों की सही संख्या के लिए बीज की सही मात्रा प्रयोग में लाएं व बीज का उपचार करके ही बिजाई करें। जिन खेतों में कपास की बिजाई ना करके जवार या बाजरे की खेती करें या 2.0 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार अवश्य करें। जिन खेतों में पिछले वर्षों में दीमक का प्रकोप रहा है वहां प्रति किलोग्राम बीज के 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी व 10 मिलीलीटर पानी के घोल से उपचारित करें। ड्रिल मशीन से डालें यूरिया व जिंक सल्फेट। अमेरिकन कपास की बिजाई करते समय हिसार और सिरसा जिलों में जहां जमीन काफी रेतीली है 37 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ बिजाई के समय ड्रिल करें। यूरिया की शेष आधी मात्रा यानी 37 किलोग्राम बोकी आने पर डालें। सुपर फॉस्फेट हमेशा ड्रिल द्वारा डालनी चाहिए। कपास की देसी किस्मों के लिए फास्फोरस की मात्रा की सिफारिश तभी की जाती है जब मिट्टी परीक्षण में फास्फोरस की कमी हो। नरमा के लिए 8 से 10 किलो और देसी कपास के लिए 5 किलोग्राम बीज डालें। नरमे का रोयो सहित 6 से 8 किलोग्राम व रोयो युक्त 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। देसी कपास में 5 किलोग्राम बीज काफी रहता है। संकर किस्मों का रोये उतरा बीज 1.2 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। बीटी संकर किस्मों का 850 ग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं। बिजाई के दौरान कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। नरमा की मुख्य किस्में एच 1226, एच 1098, संशोधित संकर किस्में एच 223, एच 287, देसी कपास की एचडी 123, एचडी 324 व एचडी 432 तथा संकर देसी की AAH1 प्रमुख है। बीटी व संकर किस्मों को 67.5 से 60 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों या कतार की दूरी 100 सेंटीमीटर व पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। अन्य किस्मों में दूरी 67.5 सेंटीमीटर व पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। मेड़ों व खालों से खरपतवार नष्ट कर दें। खरपतवार नियंत्रण के बिजाई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलीन की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मिलीबग के नियंत्रण के लिए बंजर भूमि पर व खेती के आसपास मेड़ों, खालों और रास्तों आदि पर उगने वाली खरपतवारों जैसे गाजर घास, कंगी बूटी और कपास की पिछली फसल के ठूंठों से आगे वाले पौधों को नष्ट करें।
1: किसान बागवानी फसलों की आधुनिक IPM तकनीक से कीटों से करे सुरक्षा, कम लागत में मिलेगी बम्पर पैदावार। IPM अपनाने से खर्च में आती है कमी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। किसानों को अक्सर बागवानी फसलों को बचाने के लिए महंगे हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लेना पड़ता है, पर इनके बजाय समेकित कीट प्रबंधन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM अपनाने से रसायनों पर निर्भरता कम होती है, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है व फसल में जहर का अंश नहीं रहता। रसायनों का खर्च बचाने से खेती की लागत कम होती है। IPM कोई एक दावा नहीं बल्कि कीटों को नियंत्रित करने का एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसमें रसायनों के बजाय भौतिक और यांत्रिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर कमल सैनी DHO करनाल के अनुसार इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य कीटों के प्रजनन चक्र को तोड़ना है ताकि वे फसल को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति तक पहुंच ही ना सकें। फसलों में कीट नियंत्रण के 3 प्रमुख हथियार। पहला, फेरोमोन ट्रैप। यह तकनीक कीटों के प्रजनन चक्र पर हमला करती है। इसमें विशेष लूअर का प्रयोग होता है जो विशेष गंध छोड़ता है और नर कीटों को आकर्षित करती है और उन्हें जाल में फंसा लेती है। उपयोग, अमरूद, आम, पपीता, चीकू की फसल में फल मक्खी की रोकथाम एवं टमाटर के फल छेदक कीट की रोकथाम में कारगर हैं। कद्दू वर्गीय फसलों जैसे लौकी, तुरई में यह बेहद कारगर है। प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रैप लगाएं। दूसरा, स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप यह उड़ने वाले छोटे कीटों को चिपकाकर खत्म करने का सरल तरीका है। यह 2 रंगों में आते हैं, पीले ट्रैप सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, एफिड और जैसिड के लिए। विधि, इन्हें मिर्च और टमाटर जैसी फसलों में पौधों की ऊंचाई के बराबर लगाना चाहिए। तीसरा, LED लाइट ट्रैप। कई खतरनाक कीट रात के समय सक्रिय होते हैं, यह उपकरण रोशनी के जरिए उन्हें अपनी ओर खींचता है। किसानों के लिए अनुदान। प्रदेश सरकार एकीकृत बागवानी विकास IHD योजना के तहत किसानों को इन आधुनिक उपकरणों फेरोमोन स्टिकी और LED ट्रैप की खरीद पर 75% तक का भारी अनुदान प्रदान कर रही है।
0: तरबूज की खेती में इस बार प्रति एकड़ 2 लाख तक हो रहा है मुनाफा, प्रति एकड़ 25 से 30 हजार रुपए तक का खर्च। गर्मी में तरबूज की मांग को देखते हुए सुनारिया के किसान जिले सिंह ने पिछले साल खेती शुरू की थी। अब की बार 5 एकड़ भूमि को इसकी खेती के लिए फरवरी माह में तैयार किया। प्रति एकड़ में 7 से 8 टन खाद डाली, 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बिजाई की। प्रति एकड़ 30 हजार रूपए का खर्च आया। अब ये फसल लहलहा गई है। बाजार में तरबूज की भारी मांग होने के कारण हाथों हाथ बिक रहा है। इससे करीब 2 लाख रूपए प्रति एकड़ की इनकम हुई है। इस फसल में खासियत ये है कि फल आने के दौरान रोग लगने का उतना खतरा नहीं होता, क्योंकि गर्मी में शत्रु कीट उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए मेहनत व लागत कम हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगत बताते हैं कि लू चलने के समय रोग उत्पन्न करने वाले शत्रु कीट गर्म हवा से नष्ट हो जाते हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपको लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, उन्नत रहिए।
1: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी, जिन्हें खयाम के नाम से जाना पहचाना जाता है, खयाम साहब ने 4 दशकों तक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत बनाया। सन 1982 में उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का कौमी फिल्म एजाज मिला।

इसके अलावा सन 1977 में फिल्म कभी कभी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। सन 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सन 2010 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और सन 2018 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। सन 2011 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। खयाम साहब का जन्म 18 फरवरी सन 1927 को हुआ था।

खयाम साहब का फिल्मी करियर एज ए म्यूजिक कंपोजर सन 1948 से सन 2007 तक चला, जिसमें उमराव जाओ, कभी कभी दर्द, नूरी, रजिया सुल्तान, त्रिशूल और बाजार जैसी मशहूर फिल्में शामिल।

खयाम साहब एक साधारण मिजाज के मालिक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जवानी में ही उनके बेटे की वफात और फिर उनकी श्री के हयात का इस दुनिया से चले जाना, वो भी वक्त से पहले। इस तरह के गम से खयाम साहब को गुजरना पड़ा।

0: संगीत के प्रति खयाम साहब की खिदमात कभी फरामोश नहीं की जा सकती है। एक मुकम्मल मौसिकार के तौर पे उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
1: ये जमीन चुप है,
0: खयाम साहब कई बीमारियों में मुब्तला थे। 28 जुलाई सन 2019 को 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया फानी को अलविदा कहा। अगले दिन उन्हें पूरे राज्य के सम्मान के साथ दफना

नाम बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के इस रंगमंच पर हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी के बीच कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और जीने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ खास पल जिनमें है बात, जज्बात और एक नया नजरिया। मैं हूं किरणी और पेश है कार्यक्रम रेडियो पॉडकास्ट विद किरणी। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज के पॉडकास्ट का विषय है मोबाइल आपको जड़ कर रहा है। कहीं भी एक नजर घुमाकर देखिए तो हर दूसरा व्यक्ति मोबाइल में व्यस्त नजर आएगा। बस में सफर करते समय, खाली वक्त में या फिर टीवी देखते हुए उंगलियां लगातार सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती रहती है। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, जो हमें दुनिया से जोड़े रखता है तो दूसरी ओर हमारे ध्यान, धैर्य और मन की स्थिरता को धीरे धीरे क्षीण कर रहा है। ध्यान को मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। जो व्यक्ति पूरे ध्यान यानी फोकस से कार्य करता है वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु मोबाइल और सोशल मीडिया की आदतें धीरे धीरे इस ध्यान की शक्ति को कमजोर कर रही है। मोबाइल कैसे भटका रहा है ध्यान? दरअसल सोशल मीडिया पर हर पल कुछ नया कंटेंट आता रहता है। इस लगातार होती सूचना की बौछार से हमारा दिमाग सतही जानकारी पर ही रुक जाता है और इससे गहरी सोच या एक जगह ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि सोशल मीडिया पर हम कुछ सेकंड में ही एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं। ये आदत धीरे धीरे मस्तिष्क को लंबे समय तक किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। वही जब कोई रील या वीडियो लंबा लगता है तो उसे बीच में छोड़कर दूसरे वीडियो पर चले जाते हैं, नतीजन धैर्य में कमी आने लगती है। इसके चलते लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। विचारों व आदतों पर भी पड़ता है असर। निर्णय लेने में अक्षमता। सोशल मीडिया पर बहुत सारे विकल्पों के बीच दिमाग उलझ जाता है और थकावट महसूस करने लगता है। इसके कारण निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। जब जीवन में कोई अहम फैसला लेना होता है तो हमारा मन गहराई से सोच ही नहीं पाता। रचनात्मकता से दूर होते हैं। मोबाइल की दुनिया में उलझ कर लोग धीरे धीरे अपनी रचनात्मक गतिविधियों जैसे चित्रकला, लेखन या संगीत आदि से दूर होते जा रहे हैं। पढ़ने की रुचि भी कम होने लगी है। जब सामने एक और किताब रखी हो और दूसरी ओर मोबाइल, तो ज्यादातर लोग मोबाइल उठाना ही पसंद करते हैं। मल्टीटास्किंग की आदत। एक समय में कई एप्स पर भटकते हुए लोगों को खुशफहमी हो जाती है कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, जबकि वास्तव में इस चक्कर में एक काम भी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं। कुछ सुझाव। रोज सिर्फ 10 मिनट निकालें, जर्नलिंग करें। इसके लिए रोज सिर्फ 10 मिनट का समय निकालें, कागज कलम से लिखना शुरू करें ताकि ध्यान भटके नहीं। शुरुआत कुछ आसान सवालों से करें, जैसे आज कैसा महसूस किया, क्या सोच रही या क्या सोच रहा हूँ, कब और क्यों बिना वजह मोबाइल उठाया। दिन भर की सोशल मीडिया से जुड़ी आदतों को भी दर्ज करें। ये अपने डिजिटल व्यवहार को समझने और सुधारने में भी सहायक है। माइंडफुलनेस का अभ्यास। किसी विशेष कार्य में सचेत होना, भोजन करने का पूरा ध्यान देना या ध्यान से चलना, या सभी माइंडफुलनेस के आसान तरीके हैं। ये मानसिक दृढ़ता और वर्तमान में जीने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। मनोरंजन के विकल्प। शतरंज, लूडो जैसे बोर्ड गेम्स, पहेलियां, क्रॉसवर्ड आदि मनोरंजन करने के साथ साथ दिमाग की गति और एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। मैदानी खेल भी खेलें। किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने से दिमाग को स्थिरता, कल्पना और गहराई से सोचने की शक्ति मिलती है। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत बनाइए। कला से जुड़कर ला सकते हैं सुधार। जब मन को कोई रचनात्मक कार्य दिया जाता है तो वह धीरे धीरे मोबाइल और सोशल मीडिया की आदत से दूर होने लगता है। इस दिशा में कला एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। चित्रकला, संगीत, नृत्य, लेखन जैसे कला के विभिन्न रूप न सिर्फ एकाग्रता बढ़ाते हैं बल्कि मन को शांति और आनंद भी प्रदान करते हैं। कैसे मदद करती है कला? कला में व्यस्त होते ही व्यक्ति
प्रवाह अवस्था में चला जाता है, जिससे ध्यान नहीं भटकता है। जब हम स्वयं कुछ रचते हैं, चाहे वो चित्र हो, कविता हो या हस्तकला, तो आत्म संतोष की अनुभूति होती है। रचनात्मक प्रक्रिया मन को नकारात्मकता से दूर करती है, खाली समय को सुकरालिंग की जगह सृजन में बदल देती है। दोस्तों, कहानियां खत्म होती है, लेकिन उनके जज्बात हमारे साथ रहते हैं। उम्मीद है कि आज की बातें आपके दिल तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए रंग, एक नए सुर और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

जहां पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्र तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर

तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है।

खुशबू की महकार है और तभी मोतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा न था। और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

कल रात एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख में चौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों है खफा एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने जिंदगी से पूछा, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। सुकून मौसीकी में आप सभी का स्वागत है। और मौसीकी के इस दौर के बीच में आज के सफर में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। ये मान लेना कि आगे क्या होगा, यही तो जिंदगी है। लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी है। और हां, जिंदगी कभी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी रुकती है पल भर को, तो कभी चलना शुरू कर देती है। क्योंकि एक जगह पर खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, इसी तरह से इंसान की जिंदगी के बीच में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं। दिन है तो रात भी होती है, अंधेरे हैं सुबह के उजाले भी नसीब होते हैं। लेकिन कभी कभी वो दो लोग जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, उनके ऊपर ऐसा वक्त भी आता है कि अपनी आवाज, अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने के लिए उनको नगमों का सहारा लेना पड़ता है।

मोहब्बत तो अपने आप में एक सरमाया है, ये सबको नसीब नहीं होती। कुछ ऐसे खास किस्मत वाले होते हैं जिनको ऊपर वाले ने इस खास नेमत से नवाजा होता है। ये दौलत है, मोहब्बत सुकून है, मोहब्बत लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से किसे प्यार नहीं होता। यूं ही हर कोई नहीं कहता कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

और जब किसी भी वजह से जो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं ना, तो फिर इनका दिल इस दुनिया में तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही एक दूसरे के साथ ही होती है। ये तो एक दूसरे से जुदा होकर रहने का सोच भी नहीं सकते। बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं, और जो आवाज फिजाओं के बीच में गूंजेगी वो यही होगी, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

एक नामुराद बीमारी सी है ये मोहब्बत, फिर भी खींचती है अपनी तरफ और ना चाहते हुए भी आदमी प्यार के समुंदर के बीच में डूबता चला जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो खुद ही ये कह बैठता है कि मैं इस दलदल में क्यों फंसा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।

झरने की आवाज, जो पानी की आवाज है ना झरनों के बीच में से आती है, कई बार वो आवाज भी अपने महबूब के पांव में बची हुई पाजेब की झंझनाहट सी महसूस होती है और टप टप टप कर गिरती ये बारिश की बूंदें, ये भी अपने आप में मौसीकी का एक वो अंदाज लेकर चलती हैं जिससे सुकून मिलता है और महबूब अपने दिल की बात अपने दिलबर तक पहुंचाने के लिए आवाज देता है, तुझको पुकारे मेरा प्यार।

कितनी भी आवाज दो, लेकिन दुनिया की रस्म रिवाज बेबस कर ही देती है कि वो आवाज महबूब तक ना पहुंचे। न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हम। आवाज दे के हमें न तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।

और जब बहुत यत्न करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बेकार है। महबूब के बिना इस दुनिया के बीच में मेरा कोई भी अपना नहीं। जिंदगी से नफरत सी होने लगती है। 4 दिन की जिंदगी में मैं किससे कतरा के चलूं? खाक हूं मैं, क्या खाक पे इतरा के चलूं? दिल की आवाज सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।

एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भरी रेत की और हवा में उछाल दी। लेकिन महबूब ने जो भेजा वो फूल नहीं, एक खत था, और फूल की शक्ल में दिल के सारे अल्फाज उसमें बयां हो रहे थे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।

ये कायनात, ये दुनिया, ये आबो हवा, ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ये तैरते हुए बादल, ये अपना अफसाना कहती हुई खूबसूरत हवाएं, कई बार ऐसा मदमस्त माहौल बना देती हैं कि इंसान तो क्या बादलों के लिए भी कहना पड़ जाता है। दीवाना हुआ बादल, आइए आप भी सुकून मौसीकी के इस रवानगी के बीच में अपने आप को बहा लें। यही वक्त है, यही मौका है, तो इंतजार किस बात।

बांसुरी की तरह है जिंदगी। इसमें बहुत से छेद रूपी बाधाएं हैं और जिसको इसे बजाना आ गया ना, उसे जिंदगी जीना आ गया। बांध कर मुझसे उड़ने को कहता है, मेरा कातिल ही मुझे जीने को कहता है। हर कदम देता रहा जो मुझको धोखा, बेवफा दोस्त वफा करने को कहता है। किससे करें फरियाद इंसाफ के लिए, मुझे लूटने वाला ही मेरे घर में रहता है। ना कर तजवीज तो मुझसे मोहब्बत की, मेरे दिल में अरसे से एक बेमुरब्बत रहता है। फिर भी अगर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता।

सोचता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया के बीच में तो ऐसे शख्स क्यों आना है जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा देखते हैं, एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। शायद यही मोहब्बत है। बेशक ना मिल पाए हूं, अलग अलग हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में यह ख्याल तो आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए।

वायदा खिलाफी तो अक्सर मोहब्बत के बीच में देखी और सुनी जाती है, जिसे बेवफाई का नाम दिया गया है। बहुत वायदे कर लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक ही वायदे हैं जो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें, और अगर खास मौके के इंतजार में रहे ना, तो इन खास मौकों के इंतजार में करोड़ों सपनों को बर्बाद किया है। जो वादा किया है उसको अभी ही निभा ले, आने वाला कल पता नहीं एक पल भी आपको देगा या नहीं देगा।

हसीन मौसम हो, खूबसूरत फिजाएं हों और महबूब का साथ हो, तो मरुस्थल के बीच में भी बाहर सी लगती है। तू जो मिल जाए तो खुशियों का रेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का ढेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद तो वो है कि जो मेले में भी अकेला कर दे। और ऐसे हसीन खूबसूरत आशिकाना मौसम के बीच में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी अपने का साथ, किसी अपने का अंदाज, ताकि दोनों ही मिलकर कह सके कि मौसम आशिकाना है।

बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। और बहुत सी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, क्या है ये जिंदगी? जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी कहानी है, और हम दोनों की कहानी इसी का नाम है जिंदगी।

सुकून मौसीकी के मार्फत हमने आपके दिलों में दस्तक देने की एक कोशिश की है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने ख्यालात, अपने विचार हमारे को हमारी ईमेल आईडी radiodasta@gmail.com के ऊपर जरूर भेजें, ताकि हम हमें प्रोग्राम आपकी मर्जी के मुताबिक पेश कर सकें। रेडियो विदस्ता की आज की खास पेशकश सुकून मौसीकी में मैं रहा आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपका हम सफर।

दीजिए अपने इस दोस्त को इजाजत, फिर मिलता हूँ किसी और प्रोग्राम के बीच में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं डॉक्टर नूपुर सिंह, जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के उद्घाटन पर शुभकामनाएं देने दिल्ली से आए थे। उनसे बात करेंगे श्री नरेश शर्मा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता 90.0 एफएम। और बेहद ही खुशी की बात है, रेडियो वितस्ता अब और आज से कम्युनिटी रेडियो बन चुका है और आप हमारी हर आवाज को सुन सकते हैं 90.0 एफएम पर। वही नाम लेकिन कुछ नए अंदाज के साथ में हम पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, आज हमारा जो उद्घाटन है आज के प्रोग्राम का, आज से हम लोग कम्युनिटी रेडियो के दायरे में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर दो शख्सियतों का विशेष रूप से उल्लेख करना पसंद करूँगा। पहली शख्सियत है हमारे मेंटर श्री रमेश मराठा जी। एक वो आवाज़ जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रहे हैं और उम्मीद है जब तक जिंदा रहेंगे हम इनसे सीखते रहेंगे। इनको सुनता हूं तो लगता है कि सागर की गहराइयों से कोई आवाज देकर एहसास दिला रहा है कि फीलिंग्स किसको कहते हैं। और दूसरी आवाज जो विशेष रूप से दिल्ली से आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हुई है, नूपुर सिंह जी। नूपुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम के पहले प्रसारण के बीच में और आज इस विशेष अवसर के ऊपर। करीब 3-4 साल पहले हमने इनसे एक इंटरव्यू की थी, उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी उसी तरह से हमारे कानों में गूंज रहा है। ये तो हमारे साथ जो बीत रही है बीती है वो आइए जानना चाहता हूं कि नूपुर जी, ये पिछले 3 साल से कुछ ज्यादा अरसा हो गया है आपको रेडियो वितस्ता के साथ जुड़े हुए, कैसा महसूस करती हैं आप इस परिवार के साथ जुड़ने के पश्चात और क्या प्रभाव इसने आपके ऊपर डाला है? आपके मन में एक रेडियो की छवि थी जो मैं समझता हूं कुछ और थी, अब आप रेडियो के विषय में क्या सोचती हैं?
1: सबसे पहले तो थैंक्स बोलती हूँ कि मैं जुड़ी हूँ रेडियो वितस्ता से। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि जब पहली बार मैं कनेक्ट हुई थी आप लोगों से, और जिस समय तो कहीं मन में एक अंदेशा था कि कहाँ बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन है, कैसे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ और उसके बाद जब सब कुछ ब्रॉडकास्ट हुआ तो एक अलग ही चीज़ निकल के आई थी जो आज तक कहीं मन के बहुत गहराई तक है, वो मुझे छू गया। और दूसरी बात ये है कि जो रेडियो वितस्ता के थ्रू जो आपके साथ मेरा संबंध रहा या फिर हमारे जो द ग्रेट भरत सुपुरी जी हैं उनके साथ, वो एक अलग ही रिलेशन है मेरा, वो उसको डिफाइन करना मुश्किल है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मन के भाव से है, बहुत गहराई से। और वो जर्नी अभी तक की बहुत ही खूबसूरत मेमोरी के रूप में है मेरे लिए। अभी तक का जो देखती हूँ आप लोगों का जो ये रेडियो वितस्ता का रहा सब कुछ, बहुत ही सुंदर अब तक की जर्नी है इसकी, बहुत ही सुंदर रही है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने उसको सुंदर बनाया, रचा है, इतनी मेहनत करके इतने सारे लाइव शोज देखे जिसमें फेसबुक हो या किसी भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे आपको, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में इतनी मेहनत से लोगों को कनेक्ट करके, और सब एंजॉय भी करते थे। कितने आर्टिस्ट आपके प्लेटफॉर्म पर आ गए, कितने सारे कवि आ गए, कितने सारे हास्य कलाकार, मेरे ख्याल से शायद मैंने, मुझे लगता है शायद मैंने सुना था कुछ, तो वो उस तरह के लोग भी आए हैं। तो जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है ये बहुत ही अलग है। हम लोग आकाशवाणी में होते हैं, मैं तो ऑलमोस्ट हर मंथ मेरी रिकॉर्डिंग्स वहां होती रहती हैं, लेकिन जो आप लोगों के साथ है ये कुछ और ही है।
0: देखिए, आपने जिक्र किया अभी भरत सपोरी हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेडियो वितस्ता के, उनका मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं भरत सपोरी जी का कोई शुक्रिया अदा कर सकूं। क्यों? इन्होंने यकीन मानिए कि लोग अपने बच्चे को पालने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, इन्होंने रेडियो स्टेशन रेडियो वितस्ता को पालने में, रेडियो वितस्ता को खड़ा करने में अपनी जिंदगी का एक अहम समय इसके बीच में दिया
1: जी।
0: कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं कि भरत सपोरी इस परिचय से यहाँ पर इनका परिचय हो सकता है। क्यों? जितना कुछ इनके पास में था इन्होंने सब कुछ सिर्फ रेडियो के उत्थान के लिए लगाया। रही बात ये कि कार्यक्रमों की, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, आपने भी सुना लॉकडाउन के दौरान से पहले का सिलसिला चलता चला आ रहा है। मुझे तो ईश्वर की एक बहुत अनुकंपा मेरे ऊपर रही है कि जब पहले मैंने प्रोग्राम आपके साथ में किया था उस टाइम नूपुर सिंह एक हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका हुआ करती थी, शायद ताज्जुब हो रहा होगा मेरे शब्दों पे कि हुआ करती थी, तो हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका हुआ करती थी नूपुर सिंह, जिनके नाम का डंका बजता था उनकी गायकी में। और अनुकंपा जो ईश्वर की मेरे ऊपर रही है वो ये कि आज वो हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने बैठी है और इस विशेष अवसर के ऊपर हमें विशेष तौर से बधाई देने के लिए दिल्ली से यहाँ आई है। प्रसन्नता का मतलब आप आलम न पूछिए, शब्द नहीं रहे हैं कि किस तरह से व्याख्यान करूं। थैंक यू बोलूंगा नहीं, क्योंकि बेटियों को शुक्रिया नहीं कहा जाता। हाँ, धन्यवाद जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पर आए। उस वक्त भी आपने अपनी झलक छोड़ी और वो छाप जो छोड़ी ना अपने प्रोग्राम्स के दौरान, आज भी लोग बार बार आग्रह करते हैं कि हमको वो नूपुर जी वाला प्रोग्राम सुनाइए, वो नूपुर जी वाला प्रोग्राम सुनाइए। आइए आज उनकी गलतफहमी दूर किए देते हैं, तो आइए चंद लाइनें किसी भी गीत की बिना किसी संगीत के हमको सुनाते हैं, आपको बता देते हैं कि नहीं ये साक्षात नूपुर सिंह ही हैं जो सामने बैठी। कुछ सुनाना चाहिए
1: क्यों नहीं, बड़ा मेरी खुश नसीबी है कि मैं कनेक्ट हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है। बहुत स्नेह है आपका, एक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना लाइफ में क्या मायने रखता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं कोशिश करती हूँ दो शब्द कुछ भी, वैसे सोचा तो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कुछ। एक ही गाना है सदाबहार जो हमेशा मुझे फर्स्ट जब भी सोचती हूँ तो उसकी ही झलक आती है, उसके बाद कुछ और आता है।

वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है कि माँ सरस्वती ने विशेष रूप से आपके गले में ही आकर वास किया है। बहुत ही खूबसूरत गाती हैं आप। हाँ, ये एक बात जरूर कहूंगा कि इतना सुनने के बाद जो जितने हमारे श्रोता है ना, वो चाह रहे होंगे शरोज जी आप चुप कीजिए ना, नूपुर जी से कहिए ना कुछ और सुनाए। तो मैं जानता हूँ कि आप हमारी मेहमान हैं, मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं बिना किसी साज के, बिना किसी साजिंदों के, बिना किसी म्यूजिक के आप

0: बार बार क्योंकि आप कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए, तो वो जो आपने सुनाया है अभी बेहद ही खूबसूरत गीत लग जा गले से, वो शायद आपने हमारी फरमाइश में सुनाया था। एक आखिरी बार मैं कहूँगा, एक आखिरी फरमाइश इन श्रोताओं की जो आज विशेष रूप से हमारे इस विशेष उद्घाटन के अवसर के ऊपर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके आग्रह के ऊपर कुछ भी चाहे दो ही लाइनें सुना दीजिए, मेरा वादा है इसके बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप तीसरी बार फिर गाइए, थोड़ा सा सुना दीजिए फिर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर कार्यक्रम को समापन की ओर धीरे धीरे आगे ले जाएंगे।
1: कोशिश करते हैं। एक आशा जी ने गाया हुआ है, एक उनकी गजल है, मैं कोशिश करती हूँ
0: जी।
1: सलोनों सजन है और मैं हूँ

0: सैलून सजन है और मैं
1: बहुत खूब, बेहद ही खूबसूरत। तो आज तो क्योंकि बहुत उद्घाटन का अवसर है, बहुत भाग दौड़ मची हुई है, सब तरफ भागा दौड़ी का माहौल है, हम फिर किस दिन आपको नूपुर जी के साथ में साक्षात्कार का पूरा अंश दिखाएंगे। आज इस थोड़े से अंश के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। मैं नूपुर जी का धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। नूपुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में विशेष रूप से आज आए, आपने बहुत कृपा की, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हम ये चाहेंगे ये साथ जो आपका हमारा बना है ये सदियों तक इस तरह से बना रहे और इसके पश्चात नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे साथ इस तरह से जुड़ी है। तो नूपुर जी, आप हमारे सुनने वालों को इस विशेष अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आज मैं उपस्थित हूँ 90.0 FM रेडियो वितस्ता के शानदार स्टूडियो में और मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज मेरे साथ मेरे बहुत ही प्रिय नरेश शर्मा जी हैं और भरत सकोरी जी हैं यहाँ पर, और मैं आप सभी सुनने वालों को 90.0 FM रेडियो वितस्ता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।
1: थैंक यू वेरी मच नूपुर जी और थैंक यू वेरी मच सकोरी सर, आपने मुझे मौका दिया कि इतनी बड़ी गायिका के साथ में बैठ कर मुझे एक साक्षात करने का अवसर, और हम श्रोताओं का मनोरंजन करते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे डॉक्टर नूपुर सिंह। उनसे बात की नरेश शर्मा जी ने। निर्देशक भारत सुपोरी। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहे।
1: नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विथस्ता के प्रसारण 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विथस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विथस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विथस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विथस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रूजिव पनिन पसंदीदा बात।

0: वो गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी बड़के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान की नर्सरी तैयार करने का सही समय मध्यम अवधि की 30 मई और बौनी किस्मों के लिए 30 जून तक करें बिजाई। बीजोपचार के दौरान रोगग्रस्त बीज और आभासी कंडुआ के पिंड ऊपर तैरते समय निकालकर नष्ट कर दें। धान की कम अवधि वाली बौनी किस्मों और मध्यम अवधि वाली किस्मों की बिजाई के लिए नर्सरी लगाने का यह उपयुक्त समय है। मध्यम अवधि के लिए 30 मई और बौनी किस्मों के लिए 30 जून तक नर्सरी लगा लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर काम्बोज ने बताया कि रोगों से बचाव के लिए 10 लीटर फफूंद नाशक घोल, 10 ग्राम कार्बनडाजिम, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व 10 लीटर पानी में 10 से 12 किलोग्राम बीज को 24 घंटे भिगोकर उपचारित करके ही बिजाई करें। 10 किलोग्राम बीज को 10 लीटर नमक के घोल, 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक में डुबोएं और धीरे धीरे चलाएं। हल्के रोगग्रस्त बीज और आभासी कंडुआ के पिंड ऊपर तैरने लगते हैं, जिन्हें निकालकर नष्ट कर दें। नीचे बैठे हुए भारी बीज को स्वच्छ पानी से 3 से 4 बार अच्छी तरह धो लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए 15 दिन बाद छिड़काव करें। नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण के लिए बिजाई के 1 से 3 दिन बाद 600 ग्राम सल्फेट प्रोटीलाक्लोर 30 ईसी प्रति एकड़ को 60 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रयोग करें। 1.2 लीटर ब्यूटाक्लोर ईसी, मचेंटी डक्लोर, हिल्टाक्लोर या थाबो बेनकार्ब सेटन ईसी को 30 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर अंकुरित धान को बोने के 6 दिन बाद 1 एकड़ नर्सरी में डाल सकते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 100 मिलीलीटर बिस्पायरी पैक सोडियम नॉमिनी गोल्ड 10 SL को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 15 दिन बाद प्रति एकड़ छिड़काव करें। प्रति एकड़ 10 से 12 गाड़ी गोबर की खाद डालें। धान की नर्सरी उगाने के लिए 10 से 12 गाड़ी गोबर की खाद, 22 किलोग्राम यूरिया, 65 किलोग्राम SSP तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालें। फिर 2 सप्ताह बाद 22 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ नर्सरी में डालें। सीधी बिजाई पर 35% पानी की बचत, मशीनों पर मिलेगा अनुदान। अब की बार प्रदेश में 22 जिलों में 5 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले साल 4 लाख एकड़ था। धान की सीधी बिजाई पर किसानों को प्रति एकड़ 4,500 रुपए देने के साथ 600 मशीनों पर 40,000 रुपए 50% अनुदान मिलेगा। इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। संबंधित कृषि सहायक और अन्य क्षेत्रीय अधिकारी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित कर किसानों को बीज से धान की खेती के लिए प्रेरित करेंगे। योजना की मॉनिटरिंग व लक्ष्य को पाने के लिए 13 अधिकारियों तक की नियुक्ति की गई है। 15 जुलाई तक DDA DSR का भौतिक सत्यापन कर 17 जुलाई तक मुख्यालय को भेजेंगे। 5 एकड़ से अधिक वाले किसानों का सत्यापन क्रॉस चेक DDA द्वारा स्वयं या उनके प्रतिनिधि करेंगे। पिछले 3 वर्षों में किसी भी विभागीय सब्सिडी योजना के तहत मशीनों पर कोई लाभ ना मिलने व फसल अवशेष ना जलाने वाले किसानों को ही मशीन पर अनुदान मिल सकेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के SDO डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि धान की बिजाई करने पर करीब 30 से 35% तक पानी की कम लागत के साथ मजदूरी आदि खर्च तक कम होता है। मानसून में घर पर उगाएं सब्जियां, सेहत सुधरेगी और बचत होगी।
छत और बालकनी में नीम ऑयल और जैविक खाद से करें पौधों की देखभाल। आधुनिक समय में रासायनिक खादों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग ने मानव स्वास्थ्य के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में वैज्ञानिक विधि से तैयार किचन गार्डन यानी गृह वाटिका शुद्ध और पौष्टिक सब्जियों का एक बेहतरीन विकल्प है। मानसून सीजन की सब्जियों की बुवाई के लिए यह सबसे उपयुक्त है। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, सहायक निदेशक एवं केंद्र प्रभारी NHRDF करनाल ने बताया कि यदि गृह वाटिका की शुरुआत की जाए तो न केवल परिवार को साल भर रसायन मुक्त ताजी सब्जियां मिलेंगी बल्कि आर्थिक बचत भी होगी। बेल वाली सब्जियों को 15 इंच गहरा व मिर्च टमाटर को 12 इंच गहराई तक बोएं। बीज उपलब्धता: प्याज, भिंडी, घिया, लौकी, तुरई, करेला, पालक, ग्वारफली, लोबिया, मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सल्लारो द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किचन गार्डन किट में इन सभी प्रमुख सब्जियों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उचित मात्रा में दिए जाते हैं। वैज्ञानिक विधि: वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किचन गार्डन के लिए सबसे पहले एक आदर्श पॉटिंग मिक्स मिट्टी का मिश्रण तैयार करना बेहद जरूरी है। मिश्रण का अनुपात 50% सामान्य उपजाऊ मिट्टी, 30% गोबर की खाद या केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत या कोकोपीट को आपस में मिला दें। गमलों का चयन: बेल वाली सब्जियों जैसे घिया, तुरई के लिए कम से कम 12 से 15 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग का उपयोग करें। मिर्च और टमाटर के लिए 10 से 12 इंच के गमले उपयुक्त रहते हैं। बुवाई की तकनीक: सीधे बोए जाने वाले बीज भिंडी, घिया, तुरई को मिट्टी में 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक की गहराई पर लगाएं। टमाटर, बैंगन और मिर्च के लिए पहले किसी छोटे कप या ट्रे में पनीरी यानी पॉड्स तैयार करें, फिर 20 से 25 दिनों बाद उन्हें बड़े गमलों में रोपित करें। पोषण प्रबंधन: पौधों के बेहतर विकास के लिए हर 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या सूखी पत्तियों की खाद डालें। रसोई से निकलने वाले गीले कचरे से बनी कंपोस्ट खाद इसके लिए सर्वोत्तम है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण: खरीफ के मौसम में नमी के कारण कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए रासायनिक दवाओं के स्थान पर नीम के तेल, नीम ऑयल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त घर पर ही खट्टी लस्सी, लहसुन और हरी मिर्च का अर्क तैयार करके पौधों पर छिड़कें और यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गर्मी में गन्ने की फसल में खाद का प्रयोग बढ़ा सकता है रोग। किसानों के लिए अच्छी सिंचाई करना फायदेमंद। भीषण गर्मी में गन्ने की फसल में सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर अधिक खाद का प्रयोग रोग पैदा करने की वजह बन सकता है। पर्याप्त सिंचाई से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगत बताते हैं कि अभी

सिंचाई करने पर भी पौधा जल्दी से पहले जैसा पोषण को रिकवर नहीं कर पाता। पहले से नमी की कमी होने की इस स्थिति में शत्रु कीट का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे पौधा रोग की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए फिलहाल खाद का प्रयोग करना उतना उचित नहीं है, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा। इस वजह से वर्तमान हालातों में फसल में पर्याप्त सिंचाई करने की जरूरत है। जरूरत के समय घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर पौधों की बढ़ावकर कम हो रही है तो इस स्थिति में घुलनशील उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि छिड़काव में पहले अच्छी सिंचाई करके फसल में पर्याप्त नमी हो चुकी हो। ऐसा करने पर ही छिड़काव से लाभ हो सकता है। अगर पहले सिंचाई नहीं की है तो छिड़काव से पौधों को नुकसान हो सकता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, उन्नत रहिए। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। जय भारत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
3: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा, उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोमनिया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्ही मीनारों को देख कर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: की दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
3: पेश है कार्यक्रम सरगम, अंक एक, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
4: पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ किरणी। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं पतीता फिल्म के गीत के साथ, जिसको स्वर दिए हैं लता मंगेशकर ने, लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप फिल्म भाभी का गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था चित्रगुप्त का और बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। लीजिए अब सुनिए साथी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत शकील बदायूनी का और संगीत दिया है नौशाद ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म रात और दिन से, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गाया है लता मंगेशकर और मनाडे ने, और इसके गीतकार है शैलेंद्र।

अब हम आपको सुना रहे हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म का गाना, जिसको गाया है बंसरी सेन गुप्ता ने और जिसके गीतकार है रविंद्र जैन और संगीतकार भी है रविंद्र जैन।

अब आपको सुनाती हूँ फिल्म वक्त का गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। संगीतकार है रवि और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

प्रोग्राम का अगला गाना है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म गुमराह से, जिसका म्यूजिक दिया है रवि ने और जिसके बोल लिखे हैं साहिर ने।

पेश है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, फिल्म पत्थर के सनम से।

अब पेश है फिल्म एक नजर का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पेश है गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 1, प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
3: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

नमस्कार। इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। आइए महसूस हो जाएं फिल्मी नगमों से, ताअबद जलते रहें गरिये इंतजार के चिराग, ताअबद जलते रहेंगे हम भी उनके साथ।

मुस्कुराती थी, रिश्तों की बारीकियों को समझती थी, समझाती थी मोहब्बत की जुबां। एक अनजानी लड़की थी, पर थी वो मासूम, नादान, सहमी सहमी। उड़ते परिंदों के संग उड़ने की चाहत ली, ख्वाबों को तरतीब देना शायद

हरा है मौसम और तुम्हारी यादों के इंद्रधनुष में जीवन गुजरता गया। बंद आंखों के तस्वुर में ढल जाती हो, बंद आंखों के तस्वुर में ढल जाती हो, चल जाती हो और जल जाती हो। मेरे रास्तों को रोक लेती हो अपनी आहुजारी से, दुपट्टे के छांव तले सहलाती हो, संभालती हो।

ये रास्ते ही प्यार की खुशबू का एहसास लिए, आओ हम चले इन्हीं राहों पे मुस्कुराहट का लिबास पहने। महकाएं अपने वजूद को और रोशन करें, भीगे मौसम को और टूटे अब्र को, क्योंकि ये रास्ते हैं

खूबसूरत एहसास हो जिसे मैं महसूस करता हूं अक्सर अपनी तन्हाइयों में। याद आते हैं गुजरे वो पल जब इन साफो शफाफ पानियों में हम अपने चेहरों के अक्स ढूंढते, देखते, परखते और पहचानते थे। बहुत देर तक इन किनारों पे शब कटती थी इंतजार में। हाँ, इंतजार में, शायद यूं ही बेवजह।

बेताबियां सुलग गई, धीरे धीरे खाक में मिल गई, बिछ गए दब गए उम्मीदों के ख्वाब जमीनों की गोद में। अब के मौसम सिर्फ जर्द रहे, साथ रहते रहते तुम क्यों बिखर गए, खफा हो गए, और मैं वक्त के साथ साथ

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आपने फिल्मी नगमों का ये सफर तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ।

जी आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। हमें इंतजार रहता है आपके फीडबैक का। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, कहां पर हमें और अच्छा करने की गुंजाइश है, हम आपके सुझाव को अपनी टीम तक भेजते हैं और उस पर जरूर ध्यान देते हैं और काम भी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 32 सेकंड। श्रोताओं, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। वक्त की सुइयां गवाही दे रही है कि अब हमारे आज के सफर को यहीं थामने का समय आ गया है। सुबह से लेकर अब तक रेडियो वितस्ता के माध्यम से हमने कोशिश की कि आपके जीवन में सुर संगीत सूचना और सकारात्मकता का एक बेहतरीन तालमेल बिठा सकें। आप सभी का जो प्यार और साथ हमें आज मिला, उसके लिए रेडियो वितस्ता की पूरी टीम आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। हर साल 7 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही ये दिन इस बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिलना ही चाहिए। इस दिवस को मनाने की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने दिसंबर 2018 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस पहल को विश्व संस्थान संगठन यानी WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सहयोग से वैश्विक स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य और महत्व हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सुरक्षित भोजन केवल सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार और सतत विकास के लिए बेहद जरूरी है। इस दिवस के प्रमुख उद्देश्य आपको मैं बताने वाला हूं। पहला, जागरूकता बढ़ाना। दूषित भोजन के सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारियां जैसे डायरिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग के प्रति लोगों को सचेत करना। दूसरा, रोकथाम और प्रबंधन। खाद्य जनता जोखिमों को कैसे रोका जाए और उनका प्रबंधन कैसे हो, इस पर वैश्विक नीतियां बनाना। तीसरा, सामूहिक जिम्मेदारी। सरकार उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि खेत से लेकर थाली तक भोजन सुरक्षित रहे। उपभोक्ताओं के लिए कुछ जरूरी उपाय। एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमें इन 5 बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सफाई। भोजन बनाने और खाने से पहले हाथों और बर्तनों को अच्छी तरह धोएं। दूसरा, सहज कर रखना। कच्चे और पके हुए भोजन को हमेशा अलग अलग रखें। तीसरा, सही तापमान। भोजन को सही तापमान पर पकाएं ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो सके। नंबर 4, सुरक्षित भंडारण। बचे हुए भोजन को फ्रिज में सही तापमान पर रखें और लंबे समय तक बासी रखा खाना खाने से बचें। साफ पानी का उपयोग। आखिरी, हमेशा साफ पानी और सुरक्षित कच्चे माल का ही उपयोग करें। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वास्थ्य की नींव हमारी थाली से ही शुरू होती है। सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य के संकल्प को पूरा करने के लिए केवल सरकार या संस्थाएं ही काफी नहीं है, बल्कि हम सभी को
व्यक्तिगत स्तर पर भी भोजन की बर्बादी रोकने और उसकी शुद्धता बनाए रखने का प्रयास करना होगा। यह था आज का विषय और उम्मीद करते हैं कि इस विषय से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप साफ सुथरे तरीके से अपना भोजन करेंगे और जो बचा हुआ भोजन है उसको रेफ्रिजरेटर में सही तापमान पर रखें और बासी खाना ना खाएं। चलते चलते आज की खूबसूरत समापन शायरी जो हमारी और आपकी अपनी वितस्ता को समर्पित है और सभी श्रोताओं को भी। आज की पंक्तियां यूं हैं, सदियों से जो बहती आई वो पावन सी एक धारा है, सदियों से जो बहती आई वो पावन सी एक धारा है, सुर और संगीत की महफिल में गूंजता नाम तुम्हारा है। हर दिल को जो कुछ हर दिल को जो छू जाए वो मीठी धुन है वितस्ता, हर दिल को जो छू जाए वो मीठी धुन है वितस्ता। अलविदा आज के सफर को, कल फिर मिलना दोबारा है। जी हाँ, ये पंक्तियां आज सभी आपके नाम। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रम का विवरण देता हूं। कल 8 जून 2026 सोमवार हफ्ते की शुरुआत के दिन जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर हम शुरुआत करेंगे वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। 6 बजे भक्ति संगीत, 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा और कल होगा एपिसोड 10। हमारे साथ होंगी आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर शिल्पी शर्मा। 8:30 पॉजिटिव स्टोरी एपिसोड 8 सकारात्मक सोच पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 9:30 फिल्मी किसे एपिसोड 6 काला पत्थर फिल्म हमने कल के लिए चुनी है पेश करेंगे राहुल अलियान। 10:00 इनसे मिलिए कार्यक्रम एपिसोड 10 वैदिक सर यानी वेदी मैथमेटिक्स पर बात होगी पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7:00 सरगम एपिसोड 7 पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। हर दिन की तरह कल की कड़ी है भीगा है तुम्हारा आंचल। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। कल सुबह फिर एक नई उमंग नई ऊर्जा और खूबसूरत नगमों के साथ आपसे इसी फ्रीक्वेंसी पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपने दोस्त भारत सोपोरी और रेडियो वितस्ता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप अपना रखिए ख्याल। बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दें, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करें और सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक। मिलते हैं कल। कल तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।